0: Sponsored by Roots Paints, सुंदरता को प्रतीक।
1: ओ गाइस छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो, जंग करो जंग, छोड़ दो, छोड़ दो, कागज बदना जाओ, छोड़ दो,
2: बाय छोरी।

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले बिहानको 9 बजे।

0: सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धमा सडानन्द नगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयको जरुरी सूचना।
1: प्रस्तुत विषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 9 को उपनियम 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त